अधोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345 9232860 0300 585 8481।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर।

0: ओहो सिरिया परेशान की गमा दीदी डिमेंट सेंटर द सड़ो कपारा हा मायारी अवर सुठी न मिलावेगी लक ग्रेस टाइम टेक्स इडमानी पाशा अलकरम और नोर मल्टीनेशनल ब्रांड्स और द जनानो द पारा मारिया बी मरीन सफायर निशात अप्रेंटेड लॉन हम मिलावेगी और दाला सिके द माशुमानो द पारा हा फैंसी कपड़े हम मौजूद दी
1: मतलब योचत लांदी द टोल सामान
0: आओ आओ द योचत दलांदी द हर से मिलावेगी
1: वाह वाह वाह वाह ब्याहो बेलू बेलू दुकान दतलो जरूरत निश्ता
0: आओ जी बिल्कुल पूरा फैमिली शॉपिंग द पारा सिर्फ योनू अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम तासु दखोखी दुकान लो पतयात साते अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम नीस पीएसओ पंप अल फकीर शॉपिंग प्लाजा बटाग्राम और पता दर नकल थीगी नो सैद खालिद शाह और परवेश शाह सरा पदे नंबर और राबिता कोलिशे 0351 36 640 बल नंबर दे 0391 21 162 अल सैद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर द खुशालई में
2: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज अवरे द रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंग सरी उसे

किस्मत की लकीरों से। सलाम भाई संगी नन मौसम डेर खोले दे स्पुगमे करार तब सलाम शहजादी निजाम पुरना सलाम एम शाह ब्रो हाउ आर यू वेलकम टू द शो शो इज वेरी ब्यूटीफुल सलाम टू ऑल लिसनर्स स्पेशल सलाम टू स्पुगमे करार आई

कॉस्मेटिक सेंटर की जमंगा तमाम सर तमाम प्रोडक्ट मिला हुई देखे और दो फातिर जान से पांच प्रोडक्ट तेरा वाले देखे रहा मारा दोनों दो गाने में गवाई गया ना लेकिन तुम खुले की दो गाने दो दूसरे दो गाने में गवाई अरे जोड़े खोर की खबर वही धूमता वही खातिर वही धूमता दो गाने मरता कहूँ गाने धूमता लेकिन अगवा था समझते धूमता दो गाने कोई धूमता कहना।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
0: मोहब्बत समेट कर
3: रेडियो अमन आपकी जिंदगी में।
0: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
3: रेडियो अमन नेटवर्क।

शान शॉपिंग मॉल लेडीज मार्केट बटाग्राम, स्वाति गारमेंट्स लेडीज मार्केट बटाग्राम, अलशफा क्लिनिक मेडिकल स्टोर पेमालडा, जऊर जनरल स्टोर आरएचसी मेरा, बटू कॉस्मेटिक्स लेडीज मार्केट आरएचसी अस्पताल मेरा, शाजी शॉपिंग मॉल लेडीज मार्केट मेरा, इजहार कॉस्मेटिक सेंटर लेडीज मार्केट आरएचसी मेरा, हामिद सुपर स्टोर कुजाबांडा चौक, तोहीद जनरल स्टोर काजी प्लाजा कुजाबांडा, हमालीन कॉस्मेटिक्स एंड साफ मार्केट कुजाबांडा, फाद अली कॉस्मेटिक्स लेडीज मार्केट आरएचसी मेरा, अजलान कॉस्मेटिक्स आरएचसी लेडीज मार्केट मेरा, सदाम गारमेंट्स लेडीज मार्केट बटाग्राम, मुख्तार कॉस्मेटिक्स लेडीज मार्केट बटाग्राम, हमाद डिपार्टमेंटल स्टोर नियाज मार्केट मेन बाजार बटाग्राम, सैयद मुस्तफा सरा पेमा लडीज सरा, यौजल जरूर वाखले जमंग पराडक अरखा मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर के बतास तो मिलावेगी खपारजान नरखवने। सलाम वालेकुम तासु त डाले भी जपर वर मेरा मनन लेला स्तासो ज परवादार द हर हिच्छा नयम कपरवादार यम दखपल आर जे निजाम भयम द असली कली दी लेलाए मा डेरा मनन स्तासो कल चे मैसेज लिखे का ना लग वाजे है लिखे चे मुंग पी पीगू तासु डेरा मनना खुशहाल हो से बल मैसेज दे सलाम जी सिंह है तासु प्रोग्राम डेर खिस्ते दे मंग डेर शोक सराउरू जमा तरफ ना टूल मिनवालो ता सलाम डेरा मनना तासु निजाम भाई दा क्रीम औ दा फेसवाश सो कीमत थी नो बिल्कुल जानत ब्यूटी क्रीम वाखले 350 रुपए और विटामिन सी फेस वॉश 300 रुपए रेट थे, राइस फेस वॉश 350 रुपए रेट थे, कसो ग्रान रखे हुई सब किस्म समसले भी शिकायत भी नासु बिल्कुल मुंगतवेल है तासु डेरा मनन खुशहाल हो से तासु मैसेज हो कॉल हो जमुंग दखले दास से खबर खतली भी तासु दिल आजारी शिवी बखना ग्वाड़ू तासु खपल चैनल ले तासु रो रे मा तासु किशर तासु हमजोल है माँ तासु जमुंग मशरान ये मशरान ये जमुंग खुएं दे जमुंग रुने तासु द अवरेदुलु डेरा मनना द मैसेज कॉल डेरा मनना उस बतासु नजमा इंशाल्लाह सवा दाटे मब्या प्रोग्राम को ब्या बस तासु सर डेरी खबरी को मैसेज कॉल बाखलू पदवा गानों के मियाद साथ है او خاص کر خپل د مور خپل ډیر زیات خیال ساته وی جدای راغ لاره دوشوی مرګ می قبول دی جدای نه قبل او ما ډیر مننه تاسو خپل خیال ساته خپل د صحت خیال ساته ډیر مننه

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।